0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: हस्ता।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

आपने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

naar onze studio, dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi हर एक चीज़ रातों दिन आप हमसे बात कर सकते हैं।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदेबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो देबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

और ये उजाला रेडियो है। वेलकम, स्वागत करता हूँ आपको प्रोग्राम का इस हिस्सा को सुनने के लिए।

0: इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें www.ujala.nl।
1: आज से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे और वादा करो हमेशा साथ निभाओगे।

बारिश में आसमां को पता नहीं चलता। माहिरा शर्मा आगे में चलकर पारस छबरा और गाने वाले सोनू कक्कर एंड नोह पारहोड़ निखिल डिसूसा एंड एक खलोफ नोह एन फान दी कक्कर्स दान दो वह खवोन एरबाई। And now, Gulabi Aankhein, Ujala Radio par.

गुलाबी आंखें, हाँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखे तो शराबी ये दिल हो गया। ग्रुप सनम से आप सुनिए।

आओगे जब तुम साजना तो अंगना फूल खिलेंगे। उजाला रेडियो पर आप सुने या एंड अब्बास एंड श्रेयास से इस गीत को आज आप सुने प्रोग्राम में। Kies voor jouw eigen radio. Kies altijd voor Ujala Radio.

शना मेरिया मेरिया प्रीतम एंड अरिजीत सिंह से आप सुने उजाला रेडियो पर सुनने वालों, हम आपको बता चुके ना कि कहीं ना जाइए अंदर तो पछताइए, वंत सुन अब गाना।

अगर तुम पास हो या साथ हो, मैशअप यानी कि पुराने और नए गीतों की मिलावट आप सुने अब देख रोचते, और अब एक गो और या तो

द टाइगर या द टाइगर ऑफ बैठक गाना रामदेव चैतू से आप गीत को सुने एंड गाँव वत वेर इच रुस्त खरान दोन

किंग एंड जुनिता गांधी से आप सुने कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी थोड़ा इंतजार। और सुनने वालों, अब मोहम्मद रफी साहब हिस्सा ले रहा है प्रोग्राम में।

ओ मोहम्मद रफी एंड लता जी से आप गीत को सुने, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। और अब प्रोग्राम का इस हिस्सा में पेश है एक आखिरी गीत।

वेरी गुड मॉर्निंग, वाम वेलकम उजाला रेडियो है, ये कविता रानी के साथ एक शुभ और मुबारक सुबह सभी को पेश है। ऐसे बारिशों की सुबह है आज, पर हम अपना दिन अपने सुबह अपने शाम को खराब नहीं करेंगे। आपको स्वागत करते हैं तहे दिल से खुशामदीद

साथ छूते ना कभी, चाहे कुछ पल ही जिए। Het is woensdag 9-9-2026. Het is woensdag 9 september.

अखियां जो अंजू उर दे पानी दा रंग है, आयुष्मान खुराना की आवाज में। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा। आबरू खींचे खींचे से आंखें झुकी झुकी सी, आबरू खींचे खींचे से आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, लहजा थका थका सा।

0: कभी जो बादल बरसे, और इस बार आप सुनोगे जान बन गई है विशाल एम एन असीस कौर की आवाज़ों में, उजाला है रेडियो है ये। और आज की लेसी लेसी सुबह में जो कोई अभी बिस्तर में है मजा लीजिएगा।
1: सांस की जो जुबां
0: ऐसी बारिश का

0: आप की तारीफ में क्या कहे, आप तो हमारी जान बन गई। और इस वक्त कुछ लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन लोगों ने चून किए रेडियो को, और लगता है कोई मैनहैटन में है, प्रोग्राम सुन रहा है। ज़रा सा अपना नाम भी लिख देना जब आप मैसेज भेज रहे। स्कैफनिंग से श्रीमान लक्ष्मण बदलू प्रोग्राम को सुन रहा है, आपको स्वागत करते हैं। मिस्टर शेर सिंह देन हाग से वेरी गुड मॉर्निंग। और रॉय पराख, या बेन मुई बेन लात उट इटालिया गेकोमे दुस जे लिग नोग लेकर वार्म ओंडर द डेकन्स, गनीत नोग एफे। En ik denk dat je straks ook aan het werk, weer aan het werk moet. Barish ke mausam hai kya kahe, agar aap to jaan ban gaye, to main kahungi, mere paas ek dil tha, mere paas ek dil tha, aur tumne chura liya.
1: Kuch kahaniyan samandar ki tarah hoti hain, zaruri bhi, adhuri bhi. Ek kinare se pura samandar nahi dikhta na. ये कहानी पता नहीं समंदर है या जरूरी है।
0: ये कहानी क्या आपको पता है समंदर है या कहानी है?

0: फिर मिलने का वादा था, ये किस्सा तो आधा था।
1: ना दिल भर की बातें की और ये किस्सा तो आधा था। अगर दिल में बातें रह जाती हैं तो वाकई किस्सा आधा रह जाता है। कोशिश करके पूरे दिल के बात आपको बता देना चाहिए, है ना। अल्फाज थे कि जुगनू आवाज के सफर में, अल्फाज थे कि जुगनू आवाज के सफर में, बन जाए जंगलों में जिस तरह रास्ता सा, ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, नींदों में घुल गया हो जैसे कि रत जगा सा। पहले भी लोग आए कितने ही जिंदगी में, पहले भी लोग आए कितने भी जिंदगी में, वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुड़ा सा।

0: जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना, पायल देव एंड स्टेबन बेन की आवाज़ों में आप लोगों ने सुना है। 5 मिनट हुए सरे 9 बजकर 5 मिनट 9 फॉर 3:30 एंड यू बेंट अफगस्टेम्ड ऑफ उजाला रेडियो। हाय एंड हेलो, गुडमॉर्निंग रिया कालू आई तथा हर्चे आम्स्टर्डम हमारी ही शहर की। हेलो गुडमॉर्निंग सत्या फन हार्ट वेलकम एंड या दैट इज सो। ik ben na heel lange tijd weer vorige week begonnen met de radio. Maar laten we het gezellige dag van maken. और जब मैं बादल बन जाऊँ तो तुम बारिश बन जाना, तो किसी का दिल भर जाए। मैं कहूँगी तेरी सांसों में ऐसी, क्यों ना बस जाऊँ।
1: हम जो भी रूट लेते, इनमें हमें साथ ही होना था।

तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं अरिजीत एंड पलक मोचाल से आपने गीत को सुना है। तो मैंने आपके लिए एक ऐसा गीत सेलेक्ट की, एक नया गीत है और गीत का बोल है तेरे जाने के बाद। तो चलो मिलकर आपके साथ हम इस गीत को सुनते हैं और हार्ट टचिंग सॉन्ग सैड सॉन्ग हैगा। तेरे होते हुए आ जाते थे सारे लोग, तेरे होते हुए आ जाते थे सारी दुनिया, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला।

तेरी जाने की बात टचिंग सॉन्ग, तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला, मुंतसिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, मुंतसिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, कौन आएगा यहाँ, कौन है आने वाला। मैंने देखा है बहारों में चमन को चलते, मैंने देखा है बहारों में चमन को चलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, क्या खबर थी जो मेरी जा में घुला है इतना, क्या खबर थी जो मेरी जा में घुला है इतना, है वही मुझको सरेदार भी लाने वाला। तुम तकलीफ को भी इखलस समझते हो, तुम तकलीफ को भी इखलस समझते हो, दोस्त होता नहीं, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला।

हाँ मुझ पे बरस बरस जा तू आ मुझ पे बरस। क्या खूबसूरत गीत आपने सुना है। अगला गीत पेश करने वाली हूँ और गीत का बोल है रब से मांगी। क्या मांगे? ऐसे चुप है कि ये मंजिल बिकारी हो जैसे, ऐसे चुप है कि ये मंजिल भी करी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे।

रब से बस यही दुआ मांगा था, ये दुआ हो तुम तोहफा मेरी मोहब्बत का। रब से मांगी अपने ही साया से हर गाम लरस जाता हूँ, अपने ही साये से हर गाम लरस जाता हूँ। रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो जैसे, मंजिलें दूर भी हैं मंजिलें नज़दीक भी हैं, मंजिलें दूर भी हैं मंजिलें नज़दीक भी हैं। अपने ही पाँव में जंजीर परी हो जैसे, कितने नादान हैं तेरे भूलने वाले की तुझे, कितने नादान हैं तेरे भूलने वाले की तुझे। याद करने के लिए उम्र पारी हो जैसे, आज दिल खोल के रोए हैं, आज दिल खोल के रोए हैं तो यूँ खुश है कवि, आज दिल खोल के रोए हैं तो यूँ खुश है कवि। चंद लम्हों की ये राहत भी भारी हो जैसे।

0: तेरी कमी है हर जगह, बस यादें बाकी। Another version of वो बीते दिन,
1: वो टूटे हुए ख्वाब।
0: मिलेंगे आपसे ब्रेक के उस पार कॉफी टाइम के साथ, तो अपना कॉफी चाय तैयार कीजिएगा। मैं भी जल्दी से अपने कॉफी को तैयार करती हूँ।
1: का सुकून वो मेरा पागल पंजुनू,
0: बस हमारे साथ बने रहो।

0: करते हैं
1: तो सही,
0: बादलों के पीछे से सूरज भी अपनी किरणें को हम पर गिरा रहे हैं।
1: So
0: let's enjoy this morning. Cheers, guys.

साथ में कॉफी चाय या जो भी आप पी रहे हैं, साथ में हम उसका मजा ले रहे हैं। सीतल रॉय स्वर्ण कॉफी तथा उच्च लेकर वाकर

Mr. and Mrs. Bihari. Enjoy. Cheers. तुम मिलो तो सही, तो बारिश थोड़ा सा थम गया है, तो बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर. एक वोट में चाप खिलाई तो मदन माह सोम्स एट 14 ग्राड नोग स्टेट्स बवोलक. Het zonnetje die schijnt hier en daar.

वो तसव्वुर का आलम, वो दिले आशिकी, वो प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार, अ लवली सॉन्ग निकाला गया है फ्रॉम द फिल्म ऐतराज़। आपको याद होगा फिल्म में काम किए थे करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा एंड अक्षय कुमार, एंड नॉट टू फॉरगेट अमरीश पुरी का एक ज़बरदस्त रोल था इस फिल्म में प्रियंका के साथ। लवली ब्यूटीफुल फिल्म। कुछ दिन हुए ये फिल्म निकले हुए थे, लेकिन अभी तक याद रहता है ऐसी फिल्मों। आजकल के फिल्मों जब देख लेते हो तो एक महीना दो महीना बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। और ब्रेडा से अरुण गन्हाई मैसेज भेज रहा है, अरुण खनिज फाइए कॉफ़ी एंड लात स्मैक एंड योर दोख्तर अलीशा। हाय हेलो अलीशा, एन हेले गुए मॉर्गन एन वेलकम बाय उजाला रेडियो। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, प्रोग्राम को सुनते हो, मेरी आवाज़ को सुनते हो, आपको दिल से स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। खनिज फन एलक मोमेंट फन दख वंच वेट नीट हो लांग दत नोह मह। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफिले थे आने वाले क्या हुए, मैं जिनकी राह देखता हूँ रात भर, मैं जिनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, इमारतों तो जल के राख हो गई, इमारतें तो जल के राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए, ये आप हम तो बोझ है ज़माने का, ये आप हम तो बोझ है ज़माने का, ज़माने का बोझ उठाने वाला क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए।

तूने जिंदगी में आके जिंदगी ही बदल दी, अलका याग्निक की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म हमराज। हमराज एक फिल्म था जिसमें अक्षय खन्ना ने काम किया था, और वो भी एक नेगेटिव रोल में। आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मंजिल पे पहुंचूंगी कैसे, आपका जब तक साथ नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक ज़रा सा दिल टूटा है, एक ज़रा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। किसको खबर थी सावल, किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। किसको खबर थी कि सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात ही नहीं। माना जीवन में औरत एक बार, माना जीवन में औरत एक बार मोहब्बत करती है, लेकिन मुझको ये तो बता के क्या तू औरत जात नहीं। ख़त्म हुआ मेरा अफसाना, अब ये आंसू पोंछ भी लो। ख़त्म हुआ मेरा अफसाना, अब ये आंसू भी पोंछ लो। जिसमें कोई तारा चमके, आज की रात वो रात नहीं। मेरे गमगीन होने पर अहबाब है जो हैरान, मेरे गमगीन होने पर अहबाब है जो हैरान। जैसे मैं पत्थर हूँ, मेरे सीने में जज्बात नहीं।

वादा रहा सनम मालका जी एंड अभिजीत से आपने सुने तो जानम लेट्स फॉल इन लव। तुम्हें भूल जाऊं ये होता नहीं, तुम्हें भूल जाऊं ये होता नहीं, कोई वक्त हो दर्द सोता नहीं। ना हो जाऊं बदनाम तुम, ना हो जाए बदनाम तुम, इसलिए मैं रो रो के दामन भिगोता नहीं। ये वो फासला है जो उगे खुद बखुद, ये वो फासला है जो उगे खुद बखुद, कोई दर्द के बीज बोता नहीं। ये माना कि तूफा का जोर है, ये माना कि तूफा का जोर है, कोई दर्द के बीज बोता नहीं। ये माना कि तूफा का जोर है, मैं घबरा के कश्ती डुबोता नहीं।

ओ जाना लेट्स फॉल इन लव, शान एंड श्रेया घोषाल से गीत को आपने सुना है। मोहब्बत रंग दे जाती है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिल जाते हैं। मुश्किल तो ये है, मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है।

हम सफ़र चाहिए, दिल है बेघर एक घर चाहिए, और वो भी उम्र भर चाहिए। या तेरे नाम से हर गुलशन के फूल निखर जाए, तेरे नाम से हर गुलशन के फूल निखर जाए, तेरे ही प्यार की सजदा रोम रोम में समा जाए, तेरे ही नाम से हर जीवन का रुख संवर जाए, तेरे ही नाम से जीवन का हर रुख संवर जाए, ऐ जानम तेरे चरणों में ये जीवन गुजर जाए। और चाहे जुबा से कुछ ना कहो, आंखें हमेशा कह जाती हैं।

हल्का जी और सोनू निगम, चाहे जुबान से कुछ ना कहो आंखें तो कह रही हैं तुम्हें मुझसे प्यार है। ना खंजर से ना तलवार से, ना खंजर से ना तलवार से, बस मुझे जीत ही लो प्यार से। चला के देखो मुझे तीर नज़र, चला के देखो मुझे तीर नज़र, मैं भी उठ जाऊंगी इस स्टूडियो से।

0: देखो यार, बदल ना जाना मौसम की तरह, सरकार बदल ना जाना मौसम की तरह। आसमां को मैंने प्यार की, आसमां को मैंने प्यार की और ज़मीं पे आकर गिरी। मेरी बस यही एक उम्मीद थी, मेरी बस यही एक उम्मीद थी कि मुझे मुझ पे गिरे निगाह यार की। एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाँ में हो, प्रोग्राम को सुन रहे, मेरी आवाज़ को सुन रहे, मेरा प्यार भी आपके दिल तक पहुँचे। शायद आप गाड़ी में हो तो गाड़ी को संभाल कर चलाना, रास्ते के हालात पर ज़रूर से ध्यान देना। बेंट यू ऑफ द वेग रे फैलग लेट ऑफ इट फरकेर ऑफ द वेग एंड रे फैलग यू ड्राइव सेफ।
1: Live vanuit de Hoofdstad.

पर जरूर से ध्यान देना। Virtual DJ. तो लीजिए आपके लिए पेश है गीत जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ।

क्या बात है, इस लड़के की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतना सॉफ्ट से बोलता है और इसकी अल्फाजों में बहुत ही दम है। और क्या कहता है ये, तेरे जाने का मुझे

0: तो देखा तेरे बगल में कोई और है,
1: अब तो तेरा है।
0: जब तेरी नजर से मेरी नजर मिली तो देखा चेहरे पर नूर है,
1: अब तो तेरा इंतजार ही नहीं।
0: जबरदस्त, ये पॉप स्टार, ये रॉक स्टार होने वाला है ये लड़का, माइंड इट, देखना।
1: ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ
0: तो क्या हो जाए,
1: रहो न होश में दीवानो।
0: होश में बेहोश, मदहोश, बिन होश,
1: बात

जो दिल में जलोगे तो अरमान जलेगा, जो दिल में जलोगे तो अरमान जलेगा, जो दिल में जलोगी तो अरमान जलेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। कुमार सानू एंड लता जी।

0: चूरी चूरी चुपके चुपके सोवा शिली लव स्टोरी बखोना है चूरी चूरी चुपके चुपके शांति से इश्क का पैगाम हूँ इश्क का पैगाम हूँ प्यार का वादा हो तुम सरवन
1: चुपके चुपके
2: चोरी चोरी
0: प्यार मोहब्बत के साथ
2: चुपके चुपके
1: चोरी चोरी
0: सरवन सियांबर के लिए एंड हे नामो सॉन्ग्स एंड नामो सिकंदर फयुली एंड सोन
1: चोरी चोरी चुपके चुपके
0: क्लाइन किंच
2: चोरी चोरी
0: ऑल फास्टन Happy, happy, big, big, big day. En we komen snel taart eten. Ik denk niet dat het zaterdag wordt, maar misschien zondag. Geniet van je dag. Johnny Mann.

करे कोई सितम मिले किसी को सजा, करे कोई सितम मिले किसी को सजा, दिल भूलता नहीं है कभी पहली वफा।

जाने मन तुझको जो पाया। आपने गीत को सुना आशा भोसले एंड कई कई की आवाजों में। ख्वाहिश फिल्म से निकाल कर आपके लिए पेश हुए

और देना शहर में परिवार या रिश्तेदार ननहाई खान प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं

ये वादा रहा साजना, साजना ये वादा रहा। अ लवली सॉन्ग आपने सुने फ्रॉम द फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल। तो आपने सुने होंगे कि मैं धीरे धीरे पुराने गीतों की तरफ बढ़ रही हूँ। तो लीजिए एक और गीत पेश है, तो धीरे धीरे हम चलेंगे पुराने की तरफ। आशा जी एंड किशोर कुमार। ओ ओ ओ ओ ओ नी दैट्स माय टेस्ट।

0: एंड इज हेल स्पेशल मिस्टर एंड मिसेस बिहारी के लिए जो ब्रेडा में प्रोग्राम सुन रहे हैं.
1: हवा के साथ साथ
2: अरे
1: घटा के संग संग
2: संभालना
1: हवा

हवा के साथ साथ घटा के संग संग चल तू और साथ ही चल। और जाने क्यों बार बार कहे जाके उससे मिल।

और जाने के बार बार मेरा दिल उसे कहे जाके उसे मिल। तो आप जानते हो, दिल ही जानता है क्यों ऐसे कहता है। आठ मिनट बाकी है 12 बजने में, 8 मिनटों फॉर 12, इमिडल 7, स्टूडियो टाइम।

मेरे हिस्से के प्रोग्राम में ये आखिरी गीत था। आपको यही कहूँगी कि अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने साथ दिया है। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, मेहरबानी आपसे कहूँगी। आपका साथ ना हो तो हम कहाँ। Dat was het voor mij vandaag. Dit was KR for UR. Tot de volgende keer. Let goed op jezelf. Namaskar. Goedavond, Sastri Akal. और अफसोस के साथ आप 12 बजे के प्रोग्राम में सुनोगे मृत्यु समाचार, मौत की खबर। Het was fijn om weer bij u te zijn. Dank jullie wel.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से परिवार कंधाई और परिवार झंझन के साथ बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 73 साल के आयु में द्रियन सैफ अंतखियार और

जॉनी कांधाई और परिवार, कार्ला कांधाई और सूरीनाम से विली पाटक, इन सभी के भाई। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कांधाई की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले पथफनवानिका ब्राम्स होपवेग का रहने वाला था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कांधाई, परिवार झंझन और बाकी परिवारों बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 73 साल की आयु में द्रियन जीवन तखियार और लुविस झंझन कांधाई और परिवार, जॉनी कांधाई और परिवार, कार्ला कांधाई और सूरीनाम से वेली पाटक, इन सभी के भाई। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कांधाई की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि सूरीनाम में पहले पथफनवानिका ब्राम्स होपवेग का रहने वाला था। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 1:30 बजे फ्रेडक आंस्टांड हाल्फ ट्वे किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रेमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फुर्जोर्खिंग परिवार कांधाई, परिवार झंझन और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए एम्स्टर्डम से महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल के आयु में इन तख्त यार औत श्रीमान महेंद्र अकलू की मां श्रीमती इंद्राणी अकलू की सास लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी एम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। एम्स्टर्डम से परिवार महेंद्र अकलू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्त यार औत श्रीमान महेंद्र अकलू की मां श्रीमती इंद्रा अकलू की सास नीलेश और दिनेश अकलू के आजी एम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा जो थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटवर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओखमेरवेक 275 एम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 3:30 बजे जोंदखास्तांद हाल 4 किए जाएंगे वेस्ट खार्दे क्रिमाटोरियम ओखमेरवेक 275 एम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार अकलू के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Naar de Vesting doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 richting Almere heb je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

मुख्य सिंह के आवाज में भी आपने सुने हैं ये मेडली पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए सुनो लो. नू गाँव इवन द हेडलाइंस फ्रॉम वंडा.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 59 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

किया रे सनम आनंद राज आनंद एंड श्वेता पंडित इन दोनों से आप सुने न्यू नाडक कमरिया सॉन्ग था डक कमरिया

ये था उजाला रेडियो पर बजने वाला गीत. उजाला रेडियो आप सुन सकते हैं हर एक दिन, हर एक रोज, सात दिन, 24 घंटे लगातार, ऑनलाइन ऑफ या डीएबी प्लस नीदलम धर में.

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

आज का संगीत का सफर सुनने वालों यहीं तक, और आपसे जल्दी फिर हम मिलेंगे यहीं पर उजाला रेडियो पर। तू जाने है तो मौज से रहिए।

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुन वालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

मुख्य सिंह के आवाज में भी आपने सुने हैं ये मेडली पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए सुनो लो. नू गाँव इवन आर द हेडलाइंस फ्रॉम वंडा.

0: तोनघत हो गया
1: हाँ
0: दस ना तनी से मत थोड़ा ज्यादा
1: या
0: धल्ले होंदत किलो पासा हो गया
1: या
0: और नाटी के बाबी चारी
1: ऊपर से नाटी के
0: अरे यार होंदत किलो फल बन अब तो शर्मिला से दिखता लांग तो शर्मिला तू जा रहेगा
1: तम शर्मिला से बोलती फंसून शर्मिला अब हम लोग हम देख रहे तू मोटाई गले अब हम लोग हर रोज चली बहरे चल जाए तनी है तनी तो तुम चाहिए तो कि तही अब तनी दुबराई के वंत तू बहुत मोटाई गले है यार
0: हां मैं शर्मिला तो के बोली सुन ना तो ही करवाई ले बात है तू हमें दो गो तीन गो पांच गो दस गो लड़कन दे ले बात है हम क्या करी हम तो
1: ओके पांच गो लड़कन दे ली पार्टी ओके आंधा ना दे ली बा और दिस तनी मोटाई
0: अते जाओ स्कूल दिस इज जाओ स्कूल द फ्राग इज नू व्हाट गा जे डू नू हाउ यू इवन फील फॉर शर्मिला
1: या नेचुरली
0: ऑफ गा जे सगा शर्मिला तू बहुत मोटाई गेले तू हमर रास्ता देख हम अपन रास्ता देखिला
1: सुना अब तो हमें पांच लड़कन दे जाएगा शर्मिला हमें
0: बोलिए
1: घर के सब चीज संभारे है लड़कवन के संभारे हमू के संभारे तब मुझे फोटो रख दू तो
0: शर्मिला दान होंद
1: वेल तनी मोटिवेट करी फंसून अब तनी ज्यादा हो गया है क्या अब तनी कुछ कर जाए
0: नहीं तो हम तो के छोड़ देबे हम तो के वार्स क्यों करीला सो मैं ये बलिया अल्टीमेटम स्टेले
1: या नेचुरली यू मुट दुलो स्टेले अल्टीमेटम स्टेले यू मुट वेल प्रातम मत मका तो अब तू रोज हम लोग को समझाओ ना कि सुना वट इट ओके इज ऑफ द वर्ल्ड चाहे घर में है चाहे बाहर है काम पे वगैरह यू मुट आल्टी प्रातम तो और मत प्रातम लोश हेल बुल थिंग्स अप
0: बड़ा फरस्तानदग में तो बात है
1: यार
0: हम तो के अलग बोलीला हमार शर्मिला जे होंद ट्विन तक हो जाएगा
1: तू छोड़ दी डायरेक्ट
0: डायरेक्ट हम बोले फल सुन शर्मिला थोड़ा ज्यादा हो गए
1: ज्यादा हो गए अब हम जाएगा
0: थोड़ा ज्यादा हो गए इतना हम ना संभाल पाबे अमिताभ बच्चन ही खुद खसोंगा तो
1: या जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है
0: बिस्तर पे बैठा दो
1: या
0: बिस्तर पे लेटा दो बच्चे का नहीं गद्दे का क्या काम है
1: गद्दे का क्या या
0: तो जिसके बीबी मोटी
1: विशाल गाना गा
0: रहे हैं
1: यमंग अमिताभ बच्चन कुंची कुंची ना
0: जिसके बीबी मोटी जिसके बीबी लंबी
1: या
0: जिसके बीबी छोटी
1: या
0: और कहानी कौन कौन चीज गाय से बायर
1: बहुत चीज गाय से गए मां बहुत चीज गाय से गए अमिताभ बच्चन
0: सोम सी ये द थिंग ओ कॉल लाइट हमें जाने कौन चीज सोम्स opval hoor. Ik keur het niet af hoor.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is echt de liefde soms. Maar dan zie je zo'n lengteverschil soms, hè?
1: Ha.
0: Maar echt barka. Ik hoor reus van 2 meter en dan een meisje of een vrouw van 1,60 meter.
1: Ja.
0: Daar zit er 40 centimeter. Is best wel groot hoor.
1: Ja.
0: Hè?
1: Maar
0: ze houden van elkaar, dus hoor je tiek, hè?
1: Ha.
0: खाली ओम के कितना हो सारे के लोग
2: मेरे अंगने में
1: तू तो तोर मुड़िया में कैसे गनो नहा जाएगा पेंस है
0: जिसके बीबी मोटी यार

13 मिनट हो चुके हैं, 6:00 मेरे प्यारे सुन लो, 6:13 गुजर चुके हैं। उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सुन लो आप सभी को। आज 9 तारीख सितंबर है और वो भी साल 2026। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। क्योंकि बुधवार है तो मेरे प्यारे सुनने वाला आज फिर एक बार रात्रि में 9 बजे तक पेश करेंगे हम प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। पिछले हफ्ते शैलेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम हमने पहली बार सजाए हैं, आज उनका दूसरा प्रोग्राम सजाएंगे। उनकी खूबसूरत आवाज में गाए हुए खूबसूरत नगमाएं ज्यादा से ज्यादा तो आपको मालूम है

में शामिल है, एक एक निकाल कर आपकी सेवा में पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनवालो, इस प्रोग्राम के दौरान हर एक घंटे पर आप इश्तिहारे सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात और सड़क का क्या हाल चाल है। और अफसोस के साथ भी आज 7 बजे के इश्तिहारों के बाद प्रोग्राम में मृत्यु समाचार भी पुकारा जाएगा। बरिख्त फन ओवरलैड ना द कमर्शियल ब्रेक फन सेव इर हियर ऑफ यू आर। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान भी मेरे प्यारे सिनोलो व्हाट्सएप पर बातें भी आप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0 3 3 9 0 0 और आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप अवश्य दफ्तर को तार करें सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक op 0204090807 0204090807। आपके फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, किसी भी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप तार कर सकते हो दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर, या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार मेल के जरिए आप अपना कामकाज दिवा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेल करना है info@ujala.nl। शैलेंद्र सिंह जी जो अभी अगले महीना 4 अक्टूबर को या दान वोट 73 यार ऑफ सॉरी 74 है, 73 साल की उम्र है इस वक्त और एक महीना और तो 74 साल के होंगे। उनका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बहुत सारे लोग इनकी आवाज़ को पसंद करते हैं और ख़ास करके इनकी नगमाएँ जो काफ़ी पॉपुलर हैं। आज कुछ छुपे हुए हीरे जैसे मैंने कहा भी साथ लेकर आए हैं और बस यही उम्मीद तराशा हम करते हैं कि आज भी प्रोग्राम आप भरपूर भी एंजॉय करेंगे। Ik wil ook vanuit hier mera chota bhai jo hai aaj friyari hai, main broertje Rabin Chutkan uit Gouda janamdin badhai ho, happy birthday, gefeliciteerd, en natuurlijk heel veel geluk en goede gezondheid. मैं ब्रोचे रबीन छुटकना। ओपनिंग सिलेक्शन की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक नगमा मस्ती भरी गीत है, एक नगमा जो आनंद बख्शी जी ने लिखा और एक नगमा जिसका संगीतकार है आर डी बर्मन। किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह जी ये गीत मिलकर गाएंगे और फिल्म का नाम है जागीर। मेरे प्यारे सुनने वालों, जागीर 1984 का है, 1984 पेश करता हूं सेवा में। एंजॉय यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय बैक टू द फ्यूचर और एंजॉय दिस ओपनिंग सिलेक्शन।

0: हम दिल वाले सारी दुनिया से निराले, हम सा या हम सा हम जैसा कौन है, हाँ ऐसा होना चाहिए। शैलेंद्र सिंह जी, किशोर कुमार और एक आवाज था, बहुत कम गाए हैं लेकिन फिर भी गाए हैं, जिसका नाम है शक्ति, शक्ति निज शक्ति कपूर। और सिर्फ शक्ति लिखा है, मैं और क्या कह सकता हूँ। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये नगमा आज का ओपनिंग सिलेक्शन, संगीतकार आर डी बर्मन, राहुल बर्मन। फिल्म जागीर नीघंतिन फिरन तख्त का है मेरे प्यारे सुनने वालों, 1984 प्रमोद चक्रवर्ती जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, डैनी डेंजोंगपा और इन तीनों पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है मूवी में। सिने तमान भी है, शुमानंद, रंजीत, अमरीश पुरी, द ग्रेट प्राण साहेब जी, इफ्तखार और बीना जी। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेवालो, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। आज इस 9 तारीख सितंबर बुधवार के रात्रि को पेश करता हूँ प्रोग्राम फिर एक बार बैक टू द फ्यूचर और नगमाओं के साथ, सब नहीं लेकिन बहुत सारे नगमाओं के साथ कुछ ना कुछ हमारे यादें जुड़े हुए हैं और उन यादों को हमेशा बुधवार के रात्रि को हम और आप मिलकर ताजा करते हैं। ओपनिंग सिलेक्शन तो हुआ है मेरे प्यारे सुनने वालों और हम आपको ले चलते हैं शैलेंद्र सिंह जी का पहचान जहां से हुई है, जिस गीत से हुई है और इस गीत के जरिए ये इतना मशहूर हुआ, फिल्म बिग ब्लॉकबस्टर हुआ, कलाकार, फिल्म बनाने वाले और बजाने वाले और लिखने वाले, क्या कहूँ, सभी काफी मशहूर हुए हैं और अभी तक ये गीत जब भी चलेगा लोग पसंद करेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर आपके खून के हर एक, क्या बोली, आपके नस नस में, हाँ आपके रग रग में कुछ ना कुछ होता होगा जरूर। फिल्म बॉबी का नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, बॉबी 1973 का फिल्म है, बिग ब्लॉकबस्टर मूवी, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी जीत, हालांकि जीत ये गीत जीता नहीं, अथवा सलीम खान नॉमिनेट, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलर। और गलतियां सभी से हो जाता है, गलत नगमा को शायद उस साल को चुने हुए हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि सभी गीत खूबसूरत हैं, जो भी चुने होंगे वो भी शायद खूबसूरत रहा होंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे से नौलो शैलेंद्र सिंह जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक। Ik nou net weer de verkeerde nummer en dan moet ik de goede zetten natuurlijk. Oeh, die heb ik al gedraaid, zie ik hier. Ah, mijn Shire tone hier heb ik al gedraaid. Ja, itna computer hier John hè. Bolle nee, dat heb je vorige week gedraaid, 2 september. Ah, en ham ook je 4 tarief karila. Nou, dan gaan we. अगले की जो काफी मशहूर हुआ है ये फिल्म का मैं पेश करने जा रहा हूं, एंड दैट इज नैचुरलक चाबी खो जाए, क्योंकि हम तुम कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाते हैं, फिर क्या होता है, चलो हम सुनते हैं शैलेंद्र सिंह जी के साथ लटा जी।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके,

हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। खूबसूरत गीत, पॉपुलर सॉन्ग, छेड़छाड़ सॉन्ग। हाँ जी, प्यार था लेकिन बहुत सारे छेड़छाड़ भी था। शैलेंद्र सिंह जी और लता जी की खूबसूरत आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ब्यूटीफुल म्यूजिक। मेरे प्यारे सिने वालों, बिग ब्लॉकबस्टर मूवी बॉबी जो 1978 का है, नहीं इंद्रियन से सभी ने देखे होंगे। ये मूवी से गीत हमने निकाले हैं। राज कपूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और इंट्रोड्यूस किया है एज ए हीरो उनके बेटे ऋषि कपूर जी। नया स्टार और नया स्टार के लिए नया खूबसूरत अलग सी आवाज उन्हें चाहिए था। शैलेंद्र सिंह ने गाए हैं और काफी मिलती जुलती थी उनकी आवाज ऋषि कपूर से। एना तो लक्ष्मी सफेर साहब, डिंपल भी था मूवी में, प्रेमनाथ, प्राण साहब जी, अरुणा रानी, प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल, दुर्गा खोते, एना तुलक, सोनिया सहानी जी, पिंचू कपूर। हाँ जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं सरे 6:00। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहा फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर और शैलेंद्र सिंह जी का आज दूसरा हिस्सा हम सजा रहे हैं। और जहां तक मेरा ख्याल, इस नोक एन जो मैं अगले हफ्ते 16 सितंबर को पेश करेंगे, तब तक एक तुफलख फंदाख खसीन। बहुत सारे प्रोग्राम सजाया जाता है, बनाया जाता है, बहुत सारे हम करते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम ही करते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी ढेर प्रोग्राम हम बनाते हैं, सजाते हैं, एनाते सालम आओ इन प्रीफेट टाइप, कभी कभी भूल जाता हूँ कि कितना इनका प्रोग्राम है और कितना उनका, और हमें वक्त के हिसाब से प्रोग्राम भी बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा हिस्सा का प्रोग्राम सिर्फ 3 घंटे का है। कभी कभी फ्लैंग करते हैं। ममेस्ताल कनेक्टा थोकनी थे। एक नगमा की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। ये फिल्म नहीं है, मैंने सोचा फिल्म है लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये एक एल्बम है जिसका नाम है मेरे हमदम, और तरह तरह के कलाकारों ने गीत गाए हैं इस एल्बम में। और एक गीत बहुत खूबसूरत सुरेंद्र साथी जी का लिखा हुआ शैलेंद्र सिंह जी ने गाए हैं, और वो नगमा इन्होंने गाए हैं नदीम श्रवण की साज और संगीत पर। तो फ्रॉम द एल्बम मेरे हमदम आपको सुनाता हूं एक खूबसूरत गीत। देखिए यूं ना हमें, पेश करता हूं हीरो निवार।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, देखिए यूं ना हमें दिल मेरा ये बहक जाएगा। शैलेंद्र सिंह जी की खूबसूरत आवाज और सुरेंद्र साथी जी का लिखा हुआ नगमा है। संगीतकार नदीम श्रवण और 1993 नेहत इंद्रिय नेहत में ये एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम है मेरे हमदम। और मेरे हमदम से हमने ये नगमा को निकाले हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। आपको ले चलता हूं एक गीत की ओर। ये मैं भी नहीं जानता था कि शैलेंद्र सिंह जी ने लिखा गाए हैं सॉरी कि इन्होंने गाए हैं। हमने सोचा या ईमानदार्स एक हथेन लिंक ना शैलेंद्र सिंह, लेकिन ये प्रोग्राम सजाते वक्त मालूम पड़ा कि इसका वर्जन दो है, एक आशा जी का वर्जन है मूवी में और एक शैलेंद्र सिंह जी का एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरे प्यारे सुनने वालों जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और फिल्म का नाम गुनहगार कौन है, गुनहगार कौन, ये जो फिल्म है 1991 का है, नेहत नीन नेहत और मजरू द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो शैलेंद्र सिंह जी गाकर सुनाएंगे और वो भी राहुल बर्मन के साज और संगीत पर। ये नगमा किनासनम मर जाएंगे हम।

ना सनम मर जाएंगे हम, मेरे प्यारे सुनने वालों। खूबसूरत गीत शैलेंद्र सिंह जी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, आरटी बर्मन संगीतकार, राहुल बर्मन संगीतकार, फिल्म का नाम गुनहगार कौन, और ये फिल्म 1991 का है। नीहती नहीं नीहत अशोक गायकवाड़ जी ने, गायकवाड़ जी ने डायरेक्ट किया है, राज बब्बर, मुशीन खान, संगीता बिजलानी, सईद जाफरी, परेश रवेल, सत्यन कपूर, इन सभी का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, वक्त तो ऐसा है बहुत कम, हम बढ़ रहे हैं 7 बजे की इश्तिहारे की ओर, और इश्तिहारों के बाद जैसे मैंने कहा, अफसोस के साथ भी थोड़ा सा मृत्यु समाचार है, प्रणाम में जो पुकारा जाएगा, मौत की खबरें ना द कमर्शियल ब्रेक। तमाम सूचनाओं के बाद दंबेनिकर सूरोंत 12 ओवर सेफ अवेयर तुरुग दो नगमा, एगो हैप्पी न्यू ईयर का नगमा शैलेंद्र सिंह जी का काफी पॉपुलर, अड फिल्म दो जासूस आपको सुनाने जा रहा हूं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाना इतना खूबसूरत है, आपको सुनाएंगे जरूर। और उसके बाद में एक नगमा है, हैप्पी सॉन्ग कि अरे शोला शोला भोला रे, जो मिलकर गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी, उषा मंगेशकर और बप्पी लहरी, फ्रॉम द मूवी आपकी खातिर। ये दोनों नगमाओं के बाद ब्रेक होंगे मेरे प्यारे सुनो, ब्रेक के उस पार जरूर से जरूर आप सभी से फिर हम मिलेंगे।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

अग्नि संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। आम्स्टर्डम फ्रोलिक्सराथ से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और श्रीमान किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी आम्स्टर्डम ओस ट्रांसवालस्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा जो थी आम्स्टर्डम ओस फ्रोलिक्सराट से किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और बेटा किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी आम्स्टर्डम ओस ट्रांसवालस्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा जो थी अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एथवार्ड सेंट्रम वेस्ट हार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 3:30 बजे जोंदा खानस्तांद हल्फीर किए जाएंगे वेस्ट हार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार अकलू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

रंगीला हूं मैं दिल का रतन मेरा नाम और निशाने पे निशाना लगाना है मेरा काम। शैलेंद्र सिंह जी की आवाज में मूवी का टाइटल सॉन्ग, क्योंकि फिल्म का नाम भी है रंगीला रतन। हमने निकाले हैं एक गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ नगमा और जिसका संगीतकार है कल्याण जी अनान जी। रंगीला रतन 1976 का मूवी, मेरे प्यारे सुनने वालों, निकटतम सेशन से इवन तक एस रामानाथन ने डायरेक्ट किया है, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, द ग्रेट अशोक कुमार, अजीत, जीवन सुंदर, इन सभी का एक फिल्म। 17 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 7 बजकर। तहे दिल से स्वागत करता हूं लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। फिर एक बार पेश कर रहा हूं एकदम लाइव एंड डायरेक्ट प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और पिछले हफ्ते पहली बार शैलेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम हमने सजाए थे, आज दूसरा हिस्सा है और अगले हफ्ते 16 तारीख को शैलेंद्र सिंह जी का आखिरी तीसरा हिस्सा भी हम पेश करने वाले हैं हीरो निवार। फिर एक बार स्वागत है। आज एक ऐसा दिन भी देखो ना बीता है, बीत रहे हैं कि ओफे का स्टॉकिंग है, ट्रेन, ट्रेम, बस, मेट्रो, पॉन्चेस जो है सभी नहीं चला, कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ चला है, जैसे कि आम्स्टर्डम से होफडॉर्फ या स्किपोल, लेकिन बाकी तो 24 घंटे के लिए बंद था और बंद है स्टॉकिंग। अब एन्स ना बातें रखेरिंग के जो का नाम है, कैसे बोले चिजवा, रखेरिंग के बुसलाइट पे कि वो सब मांगे तकॉर्ड करे तो या अते साल मुइलक, सभी को बहुत मुइलक है, सब कुछ महंगा ही जा रहा है और सलारस बढ़े हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं सभी चीज़ों का, तो लोग अपनी आवाज़ उठाए हैं। और आज जब स्टॉक जाकर हुआ है 24 घंटा तो इतनी बारिश हो रहे हैं आज, हालांकि नेचर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि बारिश बरस रही है। मारफोर फंदा लोगों जो खास करके अपने शहर में बाइसिकल से गए होंगे काम या अवलोपन थे बस इतनी लोग इन द रेगन, लेकिन कहा गया है कि मोटर कार का जो फीलर वीलर एक्सट्रीम नहीं रहा, एकदम नॉर्मल था, तो शायद हो सकता है भी कि बहुत सारे लोग घर पर काम किए हैं। टॉयस वर्क आजकल काफी पॉपुलर। मेरे प्यारे सुनो, एक बहुत ही खूबसूरत गीत की ओर आपको ले चलते हैं। एक नगमा अनजान साहब जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी, नाइटिंगेल आशा जी और शब्बीर

कुमार बप्पी लहरी के साज और संगीत पर 1988 नई घटी नाख्तन तख्तख का फिल्म पाप की दुनिया से हम नगमा निकाल रहे हैं और पेश करता हूं ये रहा।

जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब है जिंदगी। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों जो मिलकर गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी, नाइटिंगेल आशा जी और शब्बीर कुमार, अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा जो ये तीनों ने मिलकर गाए हैं, बप्पी लहड़ी की साज और संगीत पर। पाप की दुनिया फिल्म का नाम, पाप की दुनिया 1988 का फिल्म है, नहीं अख्तन तख्त, शिबू मित्रा, शिव कुमार डायरेक्शन और सनी देओल, चंकी पांडे, नीलम कोठारी, प्राण साहेब जी, शक्ति कपूर, डेनी दिनजोंगपा, मैकमोहन, सीमा देव, पैंटल सुधीर का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो लो, मोरखन 10 तारीख जो है बृहस्पतिवार, मोरख दोनदाख 3 सितंबर रात्रि में प्रोग्राम हम नहीं सजाएंगे। एक बैन एर मोरखनाफ नीत मैं दिल की आवाज प्रोग्राम प्लान किया गया था 8 बजे से 11 बजे, लेकिन किसी भी वजह से मैं कल प्रोग्राम नहीं सजा पाऊंगा। तो आज हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और आने वाले शनिवार 12 तारीख सितंबर को फिर सेवा में हम हाजिर रहेंगे। शनिवार को 5 घंटे लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर अवश्य आपके साथ मिलकर हम बनाएंगे लाइफ एंड आर आई की वार के स्टूडियो रतनम से। एक और पॉपुलर सॉन्ग शैलेंद्र सिंह जी का, मैं वो गीत की ओर आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम खेल खेल मैं, और खेल खेल मैं 1975 का मूवी है, 1975। द ग्रेट गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग शैलेंद्र सिंह जी गीत गाएंगे और रहुल बर्मन संगीतकार। ये नगमा

हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, और हम तुम सनम। काफी पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ, जो ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया है 1975 का मूवी खेल खेल में, से हमने जो गीत निकाले हैं। गुलशन मावरा जी ने गीत को लिखा, संगीतकार थे RD बर्मन, राहुल डे बर्मन। रवि टंडन जी ने डायरेक्ट किया है ये मूवी खेल खेल में। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राकेश रोशन, हाँ जी, देव कुमार, कमल कपूर, यंकी दास, इफ्तखार, अरुणा रानी, इन सभी का फिल्म है। तो मेरे प्यारे सुनो, मैंने आप सभी से कह दिया है कि मैं कल मोरखना फन 3 सितंबर खेन दिल की आवाज हीर ऑफ यू आर रात्रि में आज से 11 बजे दन बहने करनी थी। किसी भी वजह से मैं कल नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शनिवार 7 रहता मैंने कर लिया। 12 तारीख सितंबर 5 घंटे हाँ लेकर कनाल लेकर वीकेंड फाइव्स हियर ऑन यू आर लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। एक फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों, नाम है सुन मेरी लैला, और सुन मेरी लैला 1983 का एक फिल्म है, नीहत इंद्रियन तख्त। ये फिल्म का दो नगमाएं आगे पीछे आपको हम सुनाने जाएंगे। दोनों नगमाएं महेंद्र दलवी जी ने लिखा, संगीतकार राम लक्ष्मण, और ये दोनों नगमाएं डुएट्स है जो शैलेंद्र सिंह जी ने मिलकर गाए हैं बहरोज छतर जी के साथ। पहला गीत मौसम है रंगीन और तमन्ना है जवान, और दूसरा नगमा है चलो हटो तुम चोर हो, चलो हटो तुम चोर हो। अरे बाप रे, पेश करता हूं फ्रॉम द मूवी सुन मेरी लैला।

एनी और विकी का देखिए छेड़छाड़ सो कि चलो हटो तुम चोर हो, और उससे पहले मौसम है रंगीन तमन्ना है जवान। दो खूबसूरत नगमाए महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ, और जो मिलकर गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी और बैरोज छतर जी, और वो भी राम लक्ष्मण के साज और संगीत पर। सुन मेरी लैला फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनने वालों 1983 का फिल्म नीघंतिंद्रियन तख्त, एक लव रोमांस मूवी, और चंडर बैल जी ने डायरेक्ट किया है। राज किरण, दीपिका, ओम शिव पुरी, इन सभी का एक मूवी है। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.ujala.nl या तो हमारी सोशल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। बुरे काम का बुरा नतीजा, एक नगमा मस्सी भरी गीत है जो मिलकर गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी विद द लेजेंड सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहेब जी, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार। 1977 का मूवी फिल्म चाचा भतीजा से हम नगमा निकाल रहे हैं और इस तरह से पेश है।

0: राम बना, इसीलिए तो कहा है कि दौलत राम का बुरे काम का बुरा नतीजा।
1: क्यों भाई चाचा।

बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा। मस्ती भरी गीत रफी साहब जी और शैलेंद्र सिंह जी ने मिलकर गाए हैं। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किस आज और संगीत पर 1977 नेहतीन सैफ नसीब फतह का फिल्म चाचा भतीजा से हमने नगमा को निकाले। मनमोहन देसाई मूवी का डायरेक्टर, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, रणधीर कपूर, जोगीता बाली रहमान, इन सभी का एक फिल्म है।

दरअसल अब वक्त आ गया कि मैं दो आखिरी नगमाएं पेश करूं और ये दो नगमाएं के बाद ये घंटे से हम विदा लेंगे, बढ़ चलेंगे 8 बजे के ब्रेक की ओर। और 8 बजे के बाद आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। दो नगमाएं फ्रॉम द मूवी तराना, मेरे प्यारे सुनने वालों, तराना नीहति नेहन सेवतक का फिल्म है 1979। दो नगमाएं रविंद्र रवल जी का लिखा हुआ, जिसका संगीतकार है राम लक्ष्मण। दोनों नगमाएं शैलेंद्र सिंह जी गाकर सुनाएंगे और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय द सॉन्ग्स और ब्रेक के बाद मिलते हैं।

सबसे बढ़ के मेरा जहर है और मैं हूँ एक जहरीला इंसान। फिल्म का नाम यह है जहरीला इंसान, मेरे प्यारे सुनने वालों, मूवी का टाइटल सॉन्ग। वेल, फिल्म चला नहीं बॉक्स ऑफिस में, लेकिन आपको हम ये कह दें कि ये फिल्म के तमाम गाने जो है लाजवाब बेमिसाल है। जहरीला इंसान, जैसे कि ओ हंसनी मेरी हंसनी, फान किशोर कुमार, ये नगमा जो हमने चलाए हैं साहब से भर के, और शैलेंद्र सिंह जी का एक और नगमा जो पिछले हफ्ते हमने चलाए थे, कि मेरे दिल से ये नैन मिले रहने दो जाने मन, एंड देन है प्योग नोख, ये सिलसिला प्यार से चला, चलते चलते तेरा मेरा संगम, नाइटिंगेल आशा जी का। और एक गाना था लता जी का कि खूबसूरत लड़की मजबूरन शादी जब हो जाते हैं, और वो शादी सिर्फ एक तमाशा था, और दुखित लड़की गीत गा रहे हैं, और वो भी लता जी की आवाज में, कि वो सुनो कहानी जब मैं हुई तुझसे जुदा। या मो ये सॉन्ग्स फिल्म में मुझे कहानी अच्छी लगी, लेकिन या एक कर्नल बखराई पर की फिल्म चला नहीं। ये ऋषि कपूर का एक मान लिया जाए एक फ्लॉप मूवी है, लेकिन देखने लायक है, और गाने के लिए जरूर आप देखिएगा जहरीला इंसान। फिल्म मैं देखता हूँ पुटन कंगाल जी ने डायरेक्ट किया है, और ऋषि कपूर, मौसमी चटर्जी, नीतू सिंह, प्राण साहब जी पैंटल, मदनपुरी, इफ्तिखार, निरूपा रॉय का एक फिल्म। 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनेमालो, वो भी 8 बजकर। आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से आप सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज दूसरा हिस्सा या दूसरे बार हम सजा रहे हैं प्रोग्राम, और वो भी शैलेंद्र सिंह जी का, इनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स जिसमें से कुछ नगमाएं काफी पॉपुलर है और कुछ नगमाएं कम लेकिन खूबसूरत सभी है, आप तक मैं पेश कर रहा हूं। ले चलता आपको अगले मूवी की ओर। फिल्म का नाम है सियासत, और सियासत का एक नगमा हसन कमल जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाएंगे नाइटिंगेल आशा जी और शैलेंद्र सिंह, राहुल डोबरमन की साज और संगीत पर। सियासत एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 1992 का है। पेश करता हूँ गीत जिंदगी में है प्यार का दिन।

जिंदगी में है प्यार का दिन भी। खूबसूरत गीत हसन कमल का लिखा हुआ जो मिलकर गाए हैं रहुड़ बर्मन की साज़ और संगीत पर नाइटिंगेल आशा जी और शैलेंद्र सिंह। फिल्म का नाम सियासत, मेरे प्यारे सुनने वालों 1992 का मूवी नीघंत। सुखवंत धाड़ा ने जो डायरेक्ट किया है, कुमार गौरव, किमी कटकर, शशि रनन, शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंडा, दीपा मेहता और नीलम का एक फिल्म मेरे प्यारे सिनेमा। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेमा। फिर एक बार आप सभी से हम ये कहने कि मोरखनावंत कल 10 तारीख सितंबर दान बेनेकर नीत मैत प्रोग्रामा दिल की आवाज रात्रि में 8 से 11 बजे प्लानिंग में था बनाने के लिए, लेकिन अफसोस एक कान मोरख उनमोखलक प्रोग्रामा मांगा। लेकिन शनिवार, आने वाले शनिवार 12 तारीख को फिर हम हाजिर रहेंगे, 5 घंटे आपका और मेरा साथ रहेंगे रात्रि में 7 बजे से 12 बजे, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एंड हाउ गेसेलिग वीकेंड इन लाइडर। तू जाने तो मार्सब्रुक का चित्रा जी और हेर एंद्रू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। आमस्टरडाम का कैटरीना, डंकीवाल कैटरीना एंड या आललीचे सैन लोग, तू जाने तो आललीचे सैन अलटाइट लोग, सोमगे सैन फेवरेट सोमगे नीट, लेकिन कैटरीना एट आमस्टरडाम, डंकीवाल आपके ऐप के लिए।

रोहिणी कल्लू जी आज रतनाम बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। और मफराव एंड मनेर बिहारी वहाँ दौड़ ब्रेडा में एक्चुअली दौड़ ना है मार अमदाद खरेंस में लगे हैं, तब सोचता हूँ लोगों यही समझते होंगे कि बहुत दूर है, लेकिन रोहतनाम से दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मफराव एंड मनेर बिहारी जी आपके ऐप के लिए आलते खसेलख में चुली मिका आज दनाख डंकीवाल मिका आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। और स्कीवनिंग हमारे प्रिय स्कीवनिंग में वहां से ऐप भी आए हैं लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और लक्ष्मण जी, लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। अम्सदाम सेंट्रम से भी ऐप आए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी प्रभा, प्रभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी आपके ऐप के लिए। और वैसे तो दनहेल्दर में रहते हैं इल्स रामदयाल जी, लेकिन देखो ना दौड़ गए हैं हमारे प्रिय मॉरिशियस में, और वहां से भी इन्होंने फोकस में से थ्री यूर फर्स्ट खेल ऑफ डेथ मोमेंट। और एंड अक्टूबर से जबकि हम विंटर टाइप में जावे दाने से थ्री यूर फर्स्ट खेल फोर आउट हैं वो लोग, फोर आउट हैं। इल्स रामदयाल एंजॉय योर वेकेशन, वहां मॉरिशियस में बहुत खूबसूरत आइलैंड है, छोटा सा पैराडाइज है। और बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए, ऐप करने के लिए। आइलिन जी एट हार्लेम को भी हम कहेंगे धन्यवाद, डंकी वाला आइलिन ऐप करने के लिए, चून करने के लिए। और हम मजा ले रहे हैं, सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। एन अतुल्लक जो सदियों से सपोर्ट करते आए हैं और करते जा रहे हैं, हम सदम का आईफी जहांगीर बहुत बहुत शुक्रिया आईफी, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, चून करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और सुशीला चंद्रिका सिंह जी हमारा प्यारा सा समझनिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, चून करने के लिए। सुशीला चंद्रिका सिंह जी आज अमसल फेम एक फिल्मी कवाली पेश करने जा रहा हूँ। ये गीत मुझे बहुत खूबसूरत है और हमारे या फमै है हमारा हमारा प्लेलिस्ट में ये गीत हमने जब रखा तो मैंने सोचा अरे बाप ये तो हमारे फेवरेट सॉन्ग में से, अगर लिस्ट आप देखें तो ये गीत भी उसमें शामिल है। मुझे कुछ फिल्मी कवालीस इतना खूबसूरत लगते हैं और ये यकीनन एक है जो शैलेंद्र सिंह जी गाकर सुनाएंगे। ऋषि कपूर भी कुछ बोलेंगे और साथ भी देंगे नाइटिंगेल आशा जी। मजरू सुल्तान पुरी जी का लिखा हुआ ये एक कवाली है, एक नगमा है, और संगीतकार है आर डी बर्मन। जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम, 1982 का, नीहत इंतवेन तख्त। क्या इश्क ने समझा है और क्या हुस्ने ने फरमाया है, हम खाक नशीनों का भूखड़ में जमाना है। शैलेंद्र सिंह जी, आशा जी और ऋषि कपूर

जमाने को दिखाना है, परी हो आजमानी तुम। बहुत ही खूबसूरत फिल्मी ये था कवाली मेरे प्यारे सुनने वालों। या एक्सेप्ट नम हान तक आई कम। और जब भी एक गीत मुझे पसंद है और फिल्मी कवाली खास करके भी रफी साहब जी का गाया हुआ कुछ बहुत ही खूबसूरत फिल्मी कवालीज है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये नगमा भी एक ऐसा नगमा है या एक वही नीत फील सुलनद मिसकिन वात मिंदर फिंद मार जिस अखवेल्दख नुमर। ये था नगमा जो मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, राहुल डबरमन की संगीत, शैलेंद्र सिंह और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गीत गाए हैं। समाने को दिखाना है फिल्म का नाम। और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है नाजीर हुसैन, ऋषि कपूर पद्मिनी कोल्हापुर, कादर खान, अमित खान, जोगिता बाली, इन सभी का एक फिल्म है। वक्त निकला जा रहा है मेरे प्यारे सुनवालों, 6 मिनट गुजर चुके हैं, 8:30 ओवर क्लॉक फन हाल ऑफ नई। और रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। एंडरसन सीकर नोख 20 नंबर्स व्हाट इट विल ड्राई। नहीं आज नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे सुनवालों, क्योंकि कुछ नगमाएं ऐसे हैं लंबे हैं कुछ छोटे हैं, तो ये वक्त के हिसाब से चलाना पड़ेगा मुझे। हम आपको ले चलते हैं फिल्म खट्टा मीठा, ये फिल्म की ओर। फिल्म तक का है 1977, खट्टा मीठा, गुलजार साहब जी का लिखा हुआ एक नगमा, एक हैप्पी सॉन्ग है, फोकस में एक ब्याह वाला नगमा भी है। संगीतकार है राजेश रोशन और मिलकर ये गीत गाएंगे फ्रेनी ओ फ्रेनी, शैलेंद्र सिंह जी और अमित कुमार।

फ्रेनी ओ फ्रेनी मेरे प्यारे सुनो, अमित कुमार और शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ ये नगमा जो शादी वाला विदाई वाला नगमा है, और तुम लोगों तो जाने हैं कि हमें कितना पसंद है इस तरह के नगमाएं, तो आज ये गीत भी हमने शामिल किया है। मेरे प्यारे सुनो, ये शैलेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं उनके नगमाएं, अकेले का गाया हुआ डुएट सॉन्ग्स हम आप तक पेश कर रहे हैं। आज इनका दूसरा प्रोग्राम सजा रहे हैं और अगले हफ्ते 16 तारीख को हम सजाएंगे इनका तीसरा और आखिरी प्रोग्राम। मेरे प्यारे सुनो, हम आपको ले चलते हैं एक फिल्म की ओर जिसका नाम है सुहाग। और सुहाग एक फिल्म है 1979 का, नगमा ये भी शादी वाला है लेकिन काफी मस्ती भरी नगमा है, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी, द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर कि तेरी रब ने बना दी जोड़ी।

तेरे रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, लेकिन तुझे लग तो जाएंगे हटकड़ियां। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत मेरे प्यारे सुन वालों, शादी वाला सॉन्ग, मस्ती भरी गीत हमने आप तक पेश किया है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत मिलकर गाए हैं नाइटिंगेल आशा जी, रफी साहब जी, और जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी। फिल्म का नाम सुहाग, मेरे प्यारे सुन वालों, नेखती नेखनन सीवन तक, हाँ जी 1979 का मूवी, और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है मनमोहन देसाई, द बिग बी अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार शशि कपूर, रेखा, परवीन बाबी, अमजद खान, निरूपा रॉय, रंजीत, जीवन कादर खान, जगदीश राज, इन सभी का एक फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, ऐसा वक्त आ गया है कि आखिरी गीत आज का ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर जो हम सजा रहे हैं लाइफ एंड आर की आर के स्टूडियो रतनाम से, और सेकंड प्रोग्राम दूसरा हिस्सा ट्वी द प्रोग्राम फैन शैलेंद्र सिंह जी का जो हम सजा रहे हैं, आखिरी गीत पेश करने को जाएंगे। एक नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार, मेरे प्यारे सुन वालों, शैलेंद्र सिंह जी, अमित कुमार, नाइटिंगेल आशा जी और आरती मुखर्जी मिलकर गीत गाएंगे। परवरिश फिल्म का नाम, और ये 1977 का है, नीहतीन सीफ नन सीफ तक, ये भी मनमोहन देसाई का डायरेक्ट किया हुआ एक फिल्म है जिसमें द बिग बी अमिताभ बच्चन ने काम किया है, विनोद खन्ना जी के साथ, नीतू सिंह, शबाना आजमी एंड द ग्रेट शमी कपूर, अमजद खान, कादर खान, इंद्रानी मुखर्जी, तो मेल्टर। मेरे प्यारे सुनो, आपको फिर एक बार इतला दे कि मोड़ खबरें करनी थी, मैं दिल की आवाज मार साथ रख शनिवार को सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़, टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।